school entry in September 2027. Primary one admission 2027 के लिए application शुरू हो चुकी है. अगर आपका बच्चा 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले पैदा हुआ है और सितंबर 2027 में government या aided primary school में primary one join करेगा तो वो primary one admission 2027 में पार्टिसिपेट कर सकता है. ये प्रोसेस इस साल सितंबर से शुरू होगा. एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सप्लेनेटरी नोट्स और इन्फॉर्मेशन लीफलेट 1 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक अवेलेबल रहेंगे. फॉर्म आप अपने बच्चे के किंडरगार्टन या किंडरगार्टन कम चाइल्ड केयर सेंटर से ले सकते हो. होम अफेयर्स इंक्वायरी सेंटर्स, रीजनल एजुकेशन ऑफिसेस या एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस एलोकेशन सेक्शन से ले सकते हो. डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन नोट्स एजुकेशन ब्यूरो की POA वेबसाइट से मिल जाएगी. कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ 21 से 25 सितंबर 2026 के बीच स्कूल आवर्स में अपने चॉइस के एक गवर्नमेंट या एडेड प्राइमरी स्कूल में सबमिट करो डिस्क्रेशनरी प्लेस के लिए. जो पेरेंट्स प्राइमरी वन एडमिशन ई प्लेटफॉर्म यूजर्स हैं और अपना अकाउंट IM स्मार्ट प्लस से लिंक किया है वो 17 से 25 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एजुकेशन ब्यूरो के प्रेस रिलीजेस और POA वेबसाइट चेक कर सकते हो. कोई सवाल हो तो एजुकेशन ब्यूरो के स्कूल प्लेसेस एलोकेशन सेक्शन पर कॉल कीजिए. नंबर है 2832-7700. बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर. यह है ब्रेस्ट अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन. हांगकांग में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर. हर महिला को अपने ब्रेस्ट्स के नॉर्मल लुक और फील के बारे में पता होना चाहिए. हमेशा ब्रेस्ट अवेयर रहो. कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो तुरंत ध्यान दो, जैसे ब्रेस्ट में लंप, साइज या शेप में फर्क, निप्पल का अंदर की तरफ खींच जाना, स्किन या टेक्सचर बदल जाना. अगर ऐसा कुछ लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो. जल्दी पकड़ने से जिंदगी बच सकती है. प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी वेट और वेस्ट रखो, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दो. ज्यादा जानकारी के लिए आप www.cancer.gov.hk/breastcancer पर जा सकते हैं. अपना ख्याल रखो. ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट. क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो और सोच रहे हो कि कहां से मदद और सलाह मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे हांगकांग में 10 जॉब सेंटर्स खोले हैं. यहां जॉब सीकर्स को बिल्कुल फ्री मदद मिलती है. किसी भी जॉब सेंटर में जाकर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. वहां एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो. अपनी जॉब की जरूरतों के बारे में डिस्कस करो और उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करो जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं. खासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है. इसमें रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स आपको एक स्टॉप सॉल्यूशन देंगे, पूरी मदद केस बाय केस अप्रोच से. लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज इंग्लिश या चाइनीज में है. अगर आप इंग्लिश या चाइनीज नहीं बोल पाते तो वो आपके लिए फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस अरेंज कर देंगे. ज्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए www.jobs.gov.hk/em या इंटरक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करके यूज कीजिए. फॉल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जी अपना अगला अनाउंसमेंट. काम शुरू करने से पहले अपना स्टेटस क्लियरली समझ लो, आप एम्प्लॉई हो या सेल्फ एम्प्लॉयड. कई चीजें मैटर करती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट राइट्स और बेनिफिट्स. स्टेटस सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं, दोनों पार्टीज डिसाइड करते हैं. अगर एम्प्लॉयर आपको फोर्स करके सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहा है तो आप मना कर सकते हो. अगर आपको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो लेबर डिपार्टमेंट के कंप्लेंट हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2815-2200. Alright, आखिरी अनाउंसमेंट है हेल्थ टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रोक. सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन याद दिलाता है बहुत गर्मी में हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक से बचिए. सेफ रहने के लिए रेगुलर पानी पियो, कैफीन और अल्कोहल से बचो, हल्का और ढीला कपड़ा पहनो, हवादार या एयर कंडीशनड जगह में रहो. बाहर ज्यादा मेहनत वाला काम मत करो. आउटडोर एक्टिविटीज सुबह या शाम को प्लान करो. आउटडोर वर्कर्स रेगुलर ब्रेक लो और छांव में आराम करो. बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग ज्यादा केयरफुल रहें. बच्चों को कभी भी बंद गाड़ी में अकेला मत छोड़े. यूवी इंडेक्स हाई हो तो सीधा धूप से बचो. SPF 30 या उससे ऊपर

0: सनस्क्रीन लगाओ, यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहनो और छांव में रहो। अगर चक्कर आए, सर दर्द हो, उल्टी जैसे फील हो या कंफ्यूजन हो तो तुरंत आराम करो और डॉक्टर से मिलो। गर्मी में अलर्ट रहो, कूल रहो और अपना ख्याल रखो। ज्यादा जानकारी के लिए www.chp.gov.hk पर जाएं। ऑलराइट गाइस, आते हैं जी हमारी प्लेलिस्ट पर, जिन जिन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया है। ऑलराइट, ब्रूनो रिक्वेस्टेड मुखालिफत बाय नोमी जट। अनोनिमस ने रिक्वेस्ट किया है पछताओगे अरिजीत सिंह। सनी ने रिक्वेस्ट किया है सेल्फ ट्रेन बाय खान बैनी। अफाई ने रिक्वेस्ट किया है जैकपॉट बाय चीमा वाई। सोनिया ने रिक्वेस्ट किया है जमा बाय निंजा। अनम ने रिक्वेस्ट किया है ऑल गुड बाय खान बैनी। साइम ने रिक्वेस्ट किया है बारह बंदे बाय वरिंदर बरार। अमृतपाल ने रिक्वेस्ट किया है क्लॉकिन बाय निजर। अंकित ने रिक्वेस्ट किया है लैरिया बाय सुरजीत पुल्लर। गोरिया ने रिक्वेस्ट किया है काले जेलेबाज बाय काका। यासीन ने रिक्वेस्ट किया है वन कॉल अवे बाय अर्जेंटिलो एंड जेसी बी। अनोनमस ने रिक्वेस्ट किया है जी नहीं लगता बाय जास्मिन सैंडलस। रूबी ने रिक्वेस्ट किया है चाल बाय डॉक्टर ज़ूस। राहत फतेह अली खान और आगे जो दो गाने आई थिंक पिछले हफ्ते के गाने रिपीट हैं, वन इज नो कंट्रोल बाय जॉर्डन संधू एंड डू और डाई बाय श्री ब्रा। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर मी। वी विल बी लाइव नेक्स्ट वीक तो ऑन फेसबुक, सो यू कैन स्टार्ट सेंडिंग योर सॉन्ग रिक्वेस्ट्स। तब तक के लिए जी चिल करो, टेंशन ना लो, चढ़दी कला जा रहो। रब रखा, गुड नाइट एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।
1: जमालपुरिया।